0: भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर,
1: 100.1 FM गोल्ड पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग कोलकाता, नींद को बोलिए बाय बाय, चाय को बोलिए हाय, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नई उम्मीद और एक नई एनर्जी के साथ। और मैं इस खूबसूरत सुबह में जब पंख फड़फड़ा रहे हैं और हवा में एक नई ताजगी है, आपके हम सफर बनकर आपके साथ हूँ 100.1 FM गोल्ड पर। और नाम मेरा है पॉपी, जो बातें तो बहुत करेंगी और साथ में आपको गीतों का एक, वो कहते हैं ना, गीतों के साथ ले चलेगी एक ऐसे सफर में जहां आप जानेंगे बहुत सी बातें मौसम के बारे में, रोजमर्रे के बारे में, और खास आज के इस एपिसोड में होगा बातें दुर्गा पूजा की। तो चलिए इस दिन को मुस्कुराहट से शुरू करते हैं और आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह एक प्यारे से भक्ति भरे गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

बेहद खूबसूरत भक्ति गीत के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और आपको बताएं, जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स को ऑन किया है, वो सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह पॉपी के साथ ऑन 100.1 एफएम गोल्ड पर। और एक महत्वपूर्ण सूचना अब आप सभी के लिए, 129वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सरकार, माफ कीजिए, सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 19 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, योगायोग भवन, P36 CR Avenue, कोलकाता 7000012 में गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 129वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR Avenue, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26 अक्टूबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायत कर्ता से अनुरोध है कि वे बताए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए एक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212062 अथवा 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। और बताए गए डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों

0: पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: তাহলে শুরু করি ইনভেস্টিং এর পথ।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से, जिसका नाम है न्यूज ऑन एयर। वैसे एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप कोलकाता में हो तो आप इस वक्त हवा में ही महसूस कर रहे होंगे, शरद ऋतु चल रही है और इसी महीने में माँ दुर्गा के आने की तैयारी सबसे ज्यादा होती है। और तो और माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध करके महिषासुर नाम के राक्षस को मारा था और इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। और वही 9 दिन ही नवरात और दुर्गा पूजा होते हैं। वैसे नॉर्थ कोलकाता में, अगर नॉर्थ की बात, अगर उत्तर की बात करें तो नॉर्थ में नवरात्रि में व्रत रखा जाता है और तो और बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये 5 दिन सबसे बड़ा कार्निवल होता है। ये मैं उनको बताना चाहती हूँ जिन्हें कोलकाता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, या कोलकाता में नए नए आए हैं अपने नौकरी के कोशिश में या कुछ और कोशिश में वो कोलकाता में आए हैं और विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए बताएं कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी में कोलकाता एक अपने अलग नए रूप में आता है, एक नए अलग अंदाज में दिखता है। कोलकाता कोलकाता नहीं रहता बल्कि एक दुल्हन की तरह सज कर सबके सामने आती है।

दरअसल ये रिश्ता जो है ये रिश्ता बहुत पुराना है, सदियों से चलता आ रहा है, युग युग से जुड़ा हुआ है हमारी संस्कृति से। खास करके हम बात कर रहे हैं जब आज दुर्गा पूजा की। मज़ेदार बात ये है कि ये केवल हमारे कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत इसके साथ जुड़ता है। और मज़े की बात तो ये है कि सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में इस फेस्टिवल को, इस उत्सव को मनाया जाता है। यहाँ तक कि आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात में तो नवरात्रि चल ही रही है और आपको मालूम है कि किस जोरों से और किन मतलब एनर्जी के साथ, सुपर सुपर एनर्जी के साथ वहां पर गरबा चल रहा है। और हर रात ये 9 दिन लोग नृत्य करते हैं। एक दिल में एक अलग लेवल की खुशी होती है जो साल में हमेशा नहीं पाई जाती है, बस केवल इस मौसम में और इस साल के इस समय पर होता है। गुजरात में चल रहे नवरात को लेकर इतना क्रेज है कि स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर ने सूट बूट छोड़कर, जी हाँ सूट बूट छोड़कर कुर्ता पहना और

डांडिया स्टेज पर पूरी तरह से फुल गरबा किया। वीडियो इतना वायरल हुआ और बोला गया है कि गुजरात की संस्कृति में जो एनर्जी है वो दुनिया में कहीं नहीं। वैसे हम तो कहेंगे कि ये एनर्जी केवल गुजरात की हम बात नहीं कर सकते हैं, केवल एक प्रांत या एक राज्य से सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया में फेमस है। और इस फेमस इस वो कहते हैं ना, इसी वजह से शायद लोग हर जगह दुनिया के हर कोने में इसे मनाते हैं। तो इस जब सूट बूट की बात आई है तो एक गीत मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। सुनते रहिए, साथ रहिए। आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह पॉपी के साथ ऑन 100.1 FM गोल्ड पर।

वेल, अब कुछ मजेदार खबरों से आपको अवगत कराते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर जरूर जरूर अच्छा लगेगा। आपको बताना चाहेंगे, जी हाँ, कि आज एक लड़का, एक कमाल का लड़का काम किया है और वो लड़का और कोई नहीं, इंडिया से है, इंडिया के आर्यन शुक्ला को दुनिया का सबसे तेज कैलकुलेटर के रूप में रिकग्नाइज किया गया है। उसकी पहचान बनी है कैलकुलेटर के नाम से। ये लड़का, ये बंदा, ये खुदा का नेक बंदा 10 डिजिट के हिसाब आग झपकते ही कर देता है, मतलब कैलकुलेटर भी फेल। और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी, वो कहते हैं ना कि एक नया रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में ISS पर एक छोटा सा प्लांट भेजा गया था जीरो ग्रेविटी में, मतलब जहां पर ग्रेविटी नहीं है। और अब 5 साल बाद उसका रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के अनुसार क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है? चलिए हम बता देते हैं। सबको सब कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मेरे ज्ञान को, जो मैंने आपके लिए मैं बढ़ा के रखती हूँ, उसको आपके साथ बांटूँ और बताऊँ कि वो जो पौधा जो 2021 में इंडियन स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, वो पौधा बिना ऊपर नीचे के भी उग सकता है। बस लाइट का जो डायरेक्शन है, रोशनी की जो दिशा है, उसे फॉलो करता हुआ, मतलब फ्यूचर में आप मंगल पर सब्जी उगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जाने की तैयारी आपको, मतलब किस तरह से आप जाएंगे उसको आपको देखना पड़ेगा। वैसे हम तो यही कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वो किशोर कुमार कहेंगे।

well, लोग क्या कहेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं कुछ कहूंगी, मैं कुछ बताऊंगी खेल जगत से, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो केवल केवल इमोशनली नहीं बल्कि आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, वर्जिश करेंगे, योगा करेंगे, ये सब करके अपने बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएंगे। वैसे जब बात फिजिकल स्ट्रेंथ की हो रही है तो स्पोर्ट्स को हम कैसे सकते हैं, तो स्पोर्ट्स जगत से यानी कि खेल की दुनिया से कुछ खास खबर आपके लिए। और सबसे पहला खबर जो है वो रणजी ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। रविंद्र जडेजा ने सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में अपना 16वां फर्स्ट क्लास शतक जड़ा और डोमेस्टिक में उनका रिकॉर्ड और भी मजबूत हो गया इस वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई के मैच में यशस्वी जायसवाल विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं और सब अब हैरान हैं कि क्या टीम इंडिया के लिए कुछ नया एक्साइटिंग प्लान है। और चलिए थोड़ा सा रुख बदले बैडमिंटन की ओर। बैडमिंटन का एक बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज से डेनमार्क ओपन 2026 सुपर 750 शुरू हो रहा है ओडेंस में। और पहले ही दिन कांटे के मुकाबले पीवी सिंधु वर्सेस वर्ल्ड नंबर 1 एनसी यंग और लक्ष्य सेन वर्सेस चाउटियन चेन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जोड़ी सात्विक चिराग की आज कोर्ट पर उतरेगी। गुड न्यूज ये है कि अनमोल खर्ब ने कल रात एक इंटरनेशनल टाइटल जीता है। तो ये थी कुछ बातें बैडमिंटन से। लेकिन कोलकाता मींस फुटबॉल, और फुटबॉल के बिना वो कहते हैं ना प्यास नहीं बुझती है, तो आपके प्यास को मैं बुझा देती हूँ। कल रात एनफील्ड में मैन सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से हरा दिया है। हालैंड, डोकू और चेरकी ने गोल किया। और अगर हम पूरे हिंदुस्तान को देखें, पूरे भारत को देखें, तो उनके लिए कुछ

बातें भाई जुड़ी होनी चाहिए क्रिकेट से। तो उनके लिए बताऊं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 30-20 जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने बॉलर्स की तारीफ की, कहा प्लान को बिल्कुल सही एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये थी कुछ ख़ास खबर जो कि जुड़ी थी खेल जगत से। और अब स्टूडियो की घड़ी जब कह रही है कि 7:36 तो डेफिनेटली आई नीड टू

अच्छा ये तो हियर कम्स 6 मिनट 3 सेकंड का गैप फ्रॉम द सॉन्ग हमको तुमसे हो गया है प्यार, हम क्या करें फ्रॉम अमर अकबर एंथनी।

7:42 एक रोमांटिक सजेशन दूं कि अगर दिल में कुछ है तो अपने शोलों को दबाए न रखें और कह डालें जिनको कहना है, वरना बाजी कोई और लेकर चला जाएगा. सो दिस वाज जस्ट अ सजेशन, आगे मर्जी आपकी. वैसे वक्त तो चला है कोलकाता के मौसम के बारे में बता दूं, एकदम पूजो पूजो वाली फीलिंग आ चुकी है. कोलकाता का जो मूड है, जो मौसमी मूड है, थोड़ा सा नक्चरा है, थोड़ा सा रोमांटिक. आपको बता दें कि सुबह सुबह जो उठ चुके हैं उन्होंने ज़रूर मौसम में हल्की धुंध और हल्की बूंदाबांदी उन्हें मिली होगी. लेकिन 28 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरुआत तो हुई है, फील था 33 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि ह्यूमिडिटी ने पूरी तरह से पकड़ जो है वो बना के रखी है. 81% हवा उत्तर से 10 किलोमीटर आ रही है, जैसे माँ दुर्गा के आने की खबर लेकर. और आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जो तापमान दर्ज किए गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट वाज मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड. ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाज 97% विद मिनिमम 59%. और बारिश कल खास कुछ नहीं हुई है, लेकिन अब बात है कि आज कोलकाता का मौसम कैसा रहेगा. तो उसके लिए आपको बताएं कि दिन का तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर्स रहने वाले हैं. मौसम एकदम मस्त है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इधर उधर दिखेगा. और वो कहते हैं ना कि आड्डा मारा जोने और चाय और तेली भाजा खावार जोने, दिस इज द बेस्ट मौसम. वैसे जब ऐसी बातें होती है ना तो बस किशोर कुमार का ये गाना एकदम मस्त होता है. तो आइए सुनते हैं ये गीत, खूबसूरत गीत, किस फिल्म से लिया है वो बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये गीत को सुनाएंगे.

जी हाँ, बहुत अच्छा हाल है, क्यों ना हो भाई, ऐसे अच्छे अच्छे गाने जो आप सुन रहे हैं। लेकिन स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि ये जो अच्छा लगने का सफ़र है ये पॉपी के साथ थोड़ी देर का है, क्योंकि 9 मिनट बाकी हैं और मुझे आपको बहुत सी बातें बतानी है। वैसे आज 13th October है, 13 को हमेशा अनलकी माना जाता है। ये क्यों माना जाता है, उसकी खास वजह क्या है, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज 13th है। और आज ही के दिन, जी हाँ, आज ही के दिन सन 1307 में फ्राइडे था, आज मंगलवार है, लेकिन 13 अक्टूबर फ्राइडे था। और फ्रांस के राजा फिलिप चार ने टेम्पलर नाइट्स को अरेस्ट कर लिया था, और तब से फ्राइडे द 13th को खराब माना जाता है। अब थोड़ी सी तफ्तीश में बताऊँ, थोड़ी डिटेल में बताऊँ कि इस दिन फ्रांस के जो राजा फिलिप 4 थे,

वो टेम्पलर नाइट्स जो उस समय के बहुत ही अमीर और पावरफुल सैनिक में गिने जाते थे, उन सब सैनिकों को एक साथ अरेस्ट कर लिया। एक ग्रुप था, टेम्पलर एक ग्रुप था, और उन सबको एक साथ अरेस्ट कर लिया, टॉर्चर किया और मार दिया। क्योंकि ये काम फ्राइडे को हुआ था और तारीख 13 थी, तो लोगों ने मान लिया कि ये दिन शापित है और इस दिन कुछ किया नहीं जा सकता, अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी बनी हुई है। और आपको सबसे ख़ास बात बताऊं इस 13 के बारे में कि अमेरिका में 80% यानी 80% बिल्डिंग में 13वां फ्लोर होता ही नहीं। और आजकल हमारे हिंदुस्तान में भी मैंने कई जगह देखा है कि 12 के साथ 14 आ जाता है, मतलब 13 फ्लोर होता ही नहीं। फिर वो बिल्डिंग कहिए, होटल रूम्स कहिए, 13 को अशुभ माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी संस्कृति में। बल्कि फ्राइडे अगर है तो माँ संतोषी माँ का व्रत किया जाता है और लोग शुभ भी मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन रोम का सबसे बड़ा बदनाम एम्परर नीरो आज के दिन गद्दी पर बैठा था, यानी कि जो राज गद्दी है उसे मिली थी। ये था साल 54 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। और अमेरिका के व्हाइट हाउस का कॉर्नर स्टोन आज ही के दिन रखा गया था, यानी कि नींव जो है वो आज ही के दिन रखी गई थी। और कुछ दुनिया से बताऊं? जी हाँ, दुनिया के बाद नहीं, मेरे पास लगता बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो दुनिया को छोड़ के थोड़ा हिंदुस्तान की ओर अब देखें कि आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन C.K. नायडू का जन्म हुआ था सन 1895 में। आज के दिन इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में LTT के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और कामयाबी हासिल की थी। आज के दिन निरुपा राय हमारे यहाँ से विदा लेकर चली गई थी। और अगर आपने देखा, आज सारे के सारे गीतों को मैंने किशोर कुमार के आवाज़ के गीतों को आपको सुनाया, वो इसलिए कि आज के दिन एक युग का अंत हो गया था। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल कलाकार, जी हाँ, जो गायक भी थे, कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, किशोर कुमार आज के दिन इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए जहाँ से हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन हाँ, आज भी वो हमारे बीच जिंदा हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो हमारे साथ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ दो गानों को लेकर आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक तो सारा प्यार तुम्हारा और दूसरा गाना रहने दीजिए सस्पेंस, फिर आपको बताऊँगी। तो हियर कम्स द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम आनंद आश्रम।

वेल स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 7:58 और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ सुना नहीं सकती, क्योंकि कहानी भले ही खत्म हुई हो कुछ पल के लिए, कल फिर एक नई सुबह बोलेगी और कोलकाता की गलियों में धूप फिर से खिलेगी और अब हम फिर मिलेंगे आपके साथ। अलविदा नहीं, बस एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि आपके साथ हमारी एक बार फिर से मुलाकात होगी यहीं पर 10:02 पर, लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और उस वक्त भी मेरे पास बहुत सारी बातें होंगी बताने के लिए और सुनने के लिए। हमारा हॉटलाइन नंबर आपको मालूम है ना, 2213-1341, और वही कनेक्टिविटी हम एक बार फिर से आपके साथ स्थापित करेंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए सुहानी सुबह से पॉपी को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी बस कुछ पल में, थोड़ी ही देर में।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम

0: सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के

0: लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
1: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
2: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
0: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश केएस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के

0: राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदाम्बी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. besides the

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड खांटी सोना।
1: लड़का लड़की है बराबर तो पूछना क्यों।
2: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अपेक्षा मानुष के कखनो कष्ट दे, कखनो आशा जगाए। एमन कोनो

पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मंडारपुर के निवासी थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायाधीश के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा है कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% से कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। दिल्ली में कानून व्यवस्था स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक, गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, कनॉट प्लेस, आउटर सर्किल शामिल है। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। वहीं तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान के नात्सुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृहमंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक

0: लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Home Minister Amit Shah said, "The historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime." He said, "Through decisive coordination, the members will remain committed to building a safe, stronger and more secure BIMSTEC region." The Election Commission of India, ECI, has stepped up efforts to ensure that every eligible citizen is included in the electoral rolls, with special camps and voter assistance campaigns being organized across several states and union territories. Chief Electoral Officers, CEOs and District Election Officers, DEOs, are taking proactive measures to help voters register their names, correct personal details and resolve discrepancies in the voter lists in line with ECI instructions. Special camps are being organized at polling booths to make voter registration and correction services more accessible. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. The Traffic Police said traffic movement is likely to be affected at various stretches, including Minto Road, roundabout Mandi House, Patel Chowk, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road flyover, Sardar Patel Marg and Outer Circle Connaught Place. The Traffic Police said informed that subject to the prevailing situation, diversions may be enforced at some major junctions and stretches of Delhi. Commuters have been advised to plan their journey in advance and allow additional travel time. In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Tayyaba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control, or LOC, when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammed Faizan, Mohammed Ishtiaq, Mohammed Waqas and Mohammed Asim. All of them were residents of Mandala, Madarpur in Hajira Tehsil of POJK's Poonch district. India has called for greater access to finance, technology transfer and capacity building to accelerate the implementation of sustainable development goals, with poverty eradication remaining a key priority.

0: priority. Delivering India's statement at the UN General Assembly's second committee discussion on sustainable development, Councillor Soumya Nair highlighted the country's progress in clean energy, noting that non-fossil fuel sources now account for 55% of India's installed electricity generation capacity. On the other hand, speaking at the UN General Assembly's sixth committee, Councillor at India's UN mission, R. Mithili, called for terrorist acts that meet the threshold of crimes against humanity to be covered under the proposed International Convention on the Prevention and Punishment of Such Crimes. She stressed that nations must retain primary responsibility for protecting people, ensuring accountability for grave violations and exercising jurisdiction while respecting the rights of the accused and the interests of victims. The International Monetary Fund, IMF, has raised India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27, up from 6.4% in July. In its flagship World Economic Outlook report, the IMF said the revision in estimate comes on the back of a stronger-than-expected momentum, supported by resilient domestic demand and robust services activity. It said India stands out with upward revisions reflecting sustained momentum and growing evidence of stronger growth potential, supported by favorable demographic dynamics, expanding domestic market and continued structural reforms. Equity benchmark indices opened flat this morning amid buying in IT and realty sector shares. The Sensex opened at 71,951, up 27.05 points, and Nifty 50 began trading session at 22,364, up with 0.80 points or flat. Denmark Open badminton tournament kicks off in Odense today. Two-time Olympic medalist PV Sindhu will take on Olympic champion and world number one Aung Se-young of South Korea in the women's singles round of 32 match, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nidaira of Japan today. In men's singles, Lakshya Sen and the former world number one Kidambi Srikanth will be in action today in the round of 32 matches. In men's doubles, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be seen in action tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ के पार मध्य नेपाल में अचानक आई बाढ़ से 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे सऊदी अरब ने रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने में अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली की विफलता की जांच शुरू की और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा अब समाचार विस्तार से भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध मादक पदार्थ कट्टरपंथ तस्करी अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश भूटान भारत म्यांमार नेपाल श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है सौम्या शरण आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया
3: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी

0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान को आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 7% कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: बैंकॉक में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैठक में अक्टूबर 2026 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में उल्लेखनीय संशोधन हुआ है। IMF ने जुलाई के अनुमानों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6.4% और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6.7% वृद्धि हुई है। अत्यधिक अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद कई संरचनात्मक मजबूती भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। इनमें मजबूत घरेलू मांग, सेवाओं की मजबूत गतिविधि और संरचनात्मक सुधार तथा जनसांख्यिकी शामिल है। भारत एक और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मिश्रित वैश्विक अर्थव्यवस्था माहौल का सामना कर रहा है। IMF ने प्रतिमान रूप में 2026 के लिए औसतन $95.74 प्रति बैरल अनुमानित उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों की बात कही थी, जो राजकोषीय मार्जिन के लिए लगातार एक बाधा बनी हुई है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है।
2: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। भारत की कुल टेली डेंसिटी भी मार्च 2026 के अंत में 93.26% से बढ़कर जून 2026 के अंत में 94.31% हो गई। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत ने साइप्रस की नौसेना को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में प्रशिक्षण, क्षमता विकास और तकनीकी सहायता की पेशकश की है। साथ ही दोनों पक्षों ने भारत साइप्रस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी विस्तारित करने की इच्छा दोहराई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और साइप्रस के नौसेना कमांडर कमोडोर निकोलस लुका के बीच साइप्रस के माली नौसेना बेस में हुई बैठक के दौरान भारत ने सहयोग का प्रस्ताव रखा। रक्षा सचिव ने साइप्रस के विदेश मंत्रालय में राजनीतिक निदेशक राजदूत सलीना साम्बोस से भी मुलाकात की। श्री राजेश कुमार सिंह 12 से 13 अक्टूबर तक साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। साइप्रस में अपना कार्यक्रम संपन्न करने के बाद रक्षा सचिव आधिकारिक यात्रा पर ग्रीस जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। भूस्खलन ने बूढ़ी गंडक नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान अभी जारी रहेगा। बूढ़ी गंडक त्रिशूली नदी की एक सहायक नदी है, जो अगस्त में एक अन्य सहायक नदी में ग्लेशियर टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुई थी। सऊदी अरब ने रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने वाली हवाई रक्षा प्रणालियों की विफलता की जांच शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह हुए हमले में 13 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल हो गए हैं। जांचकर्ता पता लगा रहे हैं कि रक्षा प्रणालियों ने हमले की पूर्व चेतावनी क्यों नहीं दी। हुती मिसाइल और ड्रोन 1,000 किलोमीटर दूर से रियाद पर दागे गए थे। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने कहा है कि उसने कल रियाद को निशाना बनाकर दागी गई 2 और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका। रियाद हवाई अड्डे के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित चार आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी

रानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार नवाचार विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष नागरिक परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग

0: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है नई दिल्ली में आयोजित 8वें ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।
1: यहां अपनी बात रखी, 30 साल की उनकी यात्रा, और वो मुझे कह रहे हैं कि मैं उनका मित्र हूं। वायु में भी बड़े बड़े हैं, अपने काम के संबंध में बड़े सफल व्यक्ति है, और सफल भी है, समर्पित भी है, और भारत के प्रति उनका जो प्यार है उसको मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है, और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान करता हूं, उनका चाहक रहा हूं, और आज भी भारत के प्रति उनका प्रेम, वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति उनकी भावनाएं हमेशा बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली रही है, और इसके लिए मैं श्रीमान आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हर साल यह फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है। यहां इकोनॉमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है, और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है। मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सही समय पर सही जगह चुना है। फ्रेंड, इस साल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है। हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है, लेकिन 21वीं सदी में, खासकर तीसरे दशक में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। टुडे टेक्नोलॉजी इज पावर, डेटा इज पावर, नॉलेज इज पावर, इनोवेशन इज पावर, लेकिन साथियों असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल ये है कि इसका यूज कैसे हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से

आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर। साथियों, ये विचार भारत के लिए नया नहीं है। हमारे यहां कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका भाव यही है कि ज्ञान, धन और शक्ति जिसके पास भी हो वो इनको यूज कैसे करता है ये महत्वपूर्ण है। यानी पावर का असली मूल्य उसके पर्पज में है। और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, पावर टू एम्पावर करने वाला जो ये मानवीय भाव है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है और भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है। इसलिए मैं भारत के उदाहरणों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक YouTube यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा Instagram यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है। और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर। साथियों, 12-13 साल पहले तक भारत में एक समय वो भी था जब मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच भी अपने आप में एक शक्ति हुआ करती थी। जिसके पास एक्सेस था उसके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, अपॉर्चुनिटीज थी। 2014 के बाद जब भारत में नई सरकार बनी, हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो भारत ने मोबाइल डेटा को एफोर्डेबल बनाने पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज एक छोटे शहर का विद्यार्थी भी डिजिटल लर्निंग से जुड़ सकता है। किसी गांव में एक छोटा दुकानदार भी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। एक युवा भी ऑनलाइन नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। यानी भारत में कनेक्टिविटी ने सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटीज को भी कनेक्ट किया है। यही
यही पावर टू

एम्पावर है। साथियों, आप में से जो अतिथि विदेश से आए हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को भी आजमा कर देखिए। हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और एक बड़े कार शोरूम का कारोबार अलग अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स के एक ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है। साथियों, भारत का जो भी सामर्थ्य है उसे हम अपने घर में ही रखने के समर्थक नहीं है, उसे हम ग्लोबल साउथ के साथ, अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ निरंतर साझा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को हम दूसरे देशों से शेयर कर रहे हैं ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपने डिजिटल सिस्टम्स विकसित कर सके। हमने कोविड के समय भी कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था जो ओपन सोर्स था। यानी हमारे ये निरंतर प्रयास है कि भारत की कैपेबिलिटी दूसरे देश के लिए भी पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यानी हमारा सामर्थ्य मानवता को एम्पावर करें। साथियों, इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। वर्ष 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, नए सॉल्यूशंस बन रहे हैं। साथियों, पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास ऑथोरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, आपने जेम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक सरकारी मदद सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इससे करप्शन कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही

सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना। हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। कुछ महीने पहले भारत में एआई इंपैक्ट समिट हुई और श्रीमान ब्लूमबर्ग जी ने भी उस एआई समिट की अभी बहुत तारीफ भी की है। इसमें हमने ह्यूमैनिटी के लिए एआई के उपयोग के साथ ही एनिमल्स को कैसे एआई का फायदा हो, इससे भी चर्चा का विषय बनाया। नंदन यहां बैठे हैं, आपको बाद में काफी जानकारी वो दे सकते हैं ये कैसे किया। यानी भारत जितना सक्षम होगा मानवता के लिए, दुनिया के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है लेकिन उसके लाभ का विस्तार भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करें। साथियों, मैं आप सभी को एक और उदाहरण देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा कमिटमेंट किया था। साल 2015 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अपने इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे और भारत ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही हासिल कर ली। यानी तय समय से 9 साल पहले भारत ऐसा करने वाला पहला G20 देश बना है। यह केवल एक कमिटमेंट पूरा करने की बात नहीं थी, यह भारत की बदलती हुई एनर्जी जर्नी का भी संकेत था। साथियों, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 75 गीगावाट थी। आज ये करीब 300 गीगावाट हो चुकी है। यानी हमने लगभग 4 टाइम ज्यादा कैपेसिटी ऐड की है। साथियों, भारत में हो रहे इस एनर्जी ट्रांजिशन के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज हमारे यहां पीएम सूर्यगर और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स चल रही है।

इनसे हर साल करीब 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन एमिशन कम होने का अनुमान है। यानी सोलर पावर प्रकृति की रक्षा करने का माध्यम भी बन रहा है और लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। साथियों, दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और उसका गवाह ये दशक भी है। साथियों, 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, फिर ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या एनर्जी सप्लाई हो, उसमें भी अड़चने आ रही है। दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तब तक एक नया संकट सामने आ जाता है। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था, वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए, वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं। इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है। अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी, भरोसा ये कि जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाए भी जाएंगे, भरोसा ये कि संकट के समय हमारा पार्टनर कंट्री साथ खड़ा रहेगा। और यहीं पर भारत एक अलग मिजाज, एक अलग सोच के साथ आपके सामने है। साथियों, 21st सेंचुरी में भारत की प्रगति सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है। जब दुनिया को एफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है, तो हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है। जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए, तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है, तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है। आज भारत में 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। साथियों, ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है, तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। वी डू नॉट ग्रो एट एनीवन्स कॉस्ट, वी ग्रो विद द वर्ल्ड एंड फॉर द वर्ल्ड। और साथियों, भारत जो करता है उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता। दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को 0 दिया। इस 0 ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी।

आज भी भारत इसी भावना के साथ काम करता है और आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो विचार हैं उनमें भी वो सारी बातें दिखती हैं। इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने हैं, उनके अपने अपने हित रहे हैं, लेकिन भारत ने किस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए आप भी गौर कीजिए। हमने कैसी कैसी संस्थाओं को जन्म दिया और दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका जरा एक बार तुलना करके देख लेना। हमने क्या दिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने क्या दिया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने क्या दिया? बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी जिनसे सबका भला हो, हर जीवन का भला हो, ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं। साथियों, भारत इन विचारों को लेकर सामने आया है, ये भी आपके सामने है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का विजन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारी सोच। वन अर्थ, वन हेल्थ, ये हमारी दूरदृष्टि। यानी भारत जोड़ने पर और जुड़ने पर बल देता है और इसमें भी पावर का इस्तेमाल दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। साथियों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोर्ट्स अब 4 सिंपल कोर्ट्स में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और हम यहां रुके नहीं हैं। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों ने हमें एक मंत्र दिया था, संगच्छद्वम संवदद्वम संभो मनासी जानताम। आइए आज फिर उस मंत्र को दोहराएं। लेट अस वॉक टुगेदर।

0: Let us speak together. Let us try to understand one another. क्योंकि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं. यही है पावर टू एम्पावर. अपनी पावर को केवल अपनी प्रगति तक सीमित न रखना, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी नए अवसर बनाए. मुझे विश्वास है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम का यही मंच इसी भावना को आगे बढ़ना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा. एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
1: अभी आप नई दिल्ली में आयोजित 8वीं ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है।
1: Power is not just the ability to move ahead. It is also the ability to empower others to move ahead. भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से स्टार्टअप्स के लिए भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्पों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किया

गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में पैदल यात्रा के रास्ते और पुल बहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिनभर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोलचक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल शामिल है। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: 11:21 और FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। वैसे आज 13 अक्टूबर है, एक ऐसी तारीख जब संगीत खामोश हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जो इंसान तो चला गया लेकिन वो आवाज़ कभी भी नहीं गई। आज उनकी पुण्यतिथि है, पर सच कहूँ तो किशोर कुमार कभी गए ही नहीं इस दुनिया से। वो आज भी किसी ऑटो वाले के रेडियो में है, किसी कॉलेज के कैंटीन में है, या तो रेलवे स्टेशन के कोई सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, उसके छोटे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है या फिर ईयरफोन्स में है। वो हर जगह हैं। 4 अगस्त 1929 को खांडवा में जन्मा एक लड़का जिसका नाम आभास कुमार गांगुली था। बड़े भाई थे अशोक कुमार जो पहले ही सुपरस्टार थे। छोटा भाई घर से भागकर मुंबई आया हीरो बनने। हीरो बना, पर किस्मत ने तो उस हीरो से भी कुछ और ही बड़ा करवाना था, इसलिए शायद कुछ ऐसा कर गए कि आज भी दिलों में राज करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वह राज करते हैं, सबके दिलों में वो बसे हुए हैं, हमारे बहुत प्यारे अपने किशोरदा।

बैक टू बैक हमने आपको तीन गीतों से रूबरू करवाया, पहला गीत जहरीला इंसान से, दूसरा सफर से और आखिरी गीत अभी आपने जो सुना वो था फिल्म सागर से। और दोस्तों अगर बात किशोर कुमार की हम करते हैं तो किशोर कुमार एक ऐसे शख्सियत थे जो न सिर्फ एक्टर था, डायरेक्टर

था, राइटर था, प्रोड्यूसर था, म्यूजिक डायरेक्टर था और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त कॉमेडियन था, यानी कि कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज था। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता, पर कभी भी स्टेज पर जाकर खुद उन्होंने अवार्ड नहीं लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, किशोरदा की आवाज़ में एक अजीब सी बात थी, वो एक ही वक्त में दर्द भी पिरो देते थे और साथ में मस्ती भी। आप अगर एक गीत की हम बात करें, वो एक माइलस्टोन है। जी हाँ दोस्तों, वो गीत बॉलीवुड में एक माइलस्टोन है, मतलब एक चतुर नार। में बात करें उस गीत के श्रृंगार में, उसके इसमें जो रस था, ये था किशोर का शरारती बचपन। जी हाँ, जहाँ सुर से ज़्यादा मस्ती हुआ करती थी। मन्ना दी के साथ गाया ये गीत, ये जुगलबंदी, आज भी म्यूज़िक का सबसे बड़ा मजाक ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा कमाल कह सकते हैं।

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे आय आय आय आय आय आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, मरत जात।
2: राजेंद्र किशन का ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, मन्ना दे साहब जो इतने परिपक्व थे शास्त्रीय गायन में, वहीं किशोर कुमार जिन्होंने कभी गीत सीखा ही नहीं, किसी प्रकार की उन्होंने ट्रेनिंग ली ही नहीं, लेकिन एक ऐसे मंजे हुए कलाकार के साथ कॉम्पीट करना, ये सिर्फ उन्हीं के द्वारा संभव था। जी हाँ, पड़ोसन का ये खूबसूरत गीत, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये कॉमेडी का अल्टीमेट है, ये गीत का, ये संगीत का, भारतीय संगीत का ये अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ बन ही नहीं सकता।

0: बनारसी बाबू।
1: जी हाँ, बनारस से आपको बहुत प्यार था ये तो हम भी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि बनारस से जुड़ा हुआ एक गीत खई के पान बनारस वाला पर सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार का ही हक था। वैसे दोस्तों एक बात तो है कि गायक जो है वो हमेशा अपने गीतों को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ गायकी के साथ डालते हैं, जैसे कि हंसना, कहीं कहीं पर धीरे से साउंड को मॉड्यूल करना, मॉड्यूलेशन में लाना। लेकिन किशोर कुमार एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे निडर थे और एक्सपेरिमेंट करने वाले थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। वो गाते गाते चिल्लाते थे, वो गाते गाते आवाज करते थे, गाते गाते वो हंसते थे, गाते गाते वो श्रीक आउट करते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं गले को खंगालते थे, जैसे कि पान खाया वाले उस गाने में उन्होंने किया था। ये भी उनका एक एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट उनका बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा। आज भी जब हम पान खाते हैं तो बनारसी पान के लिए एक अलग जगह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बनारस का जो तड़का था, जो पान में जो मसाले का जो झटका था, तड़का था, जो भी कह सकें, वो सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार का ही दिया हुआ है।
0: ओ चका चक फिर लो पान चबाए, आहा

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

ये वो गीत है जो हर खूबसूरत लड़की को और भी खूबसूरत बना देता है। आज 13 अक्टूबर है, एक तारीख जब एक आवाज खामोश हो गई थी, पर सच कहूं तो ये आवाज कभी खामोश हुई ही नहीं। आज साल 2026 है, दुनिया में न जाने कितने म्यूजिक चैनल्स हैं, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, और एक रिपोर्ट कहती है कि हर एक मिनट में इस धरती के किसी न किसी कोने में किशोर कुमार का कोई न कोई गाना बज रहा होता है। कहीं मुंबई की लोकल ट्रेन में, तो कभी पल पल दिल के पास गुनगुनाता हुआ वो सफर, तो कहीं लंदन के किसी पब में एक अजनबी हसीना से पर कोई झूम रहा है, कभी कोलकाता की ट्राम में गाड़ी बुला रही है बज रहा है, तो कहीं एक अकेला लड़का रात के 2 बजे कोई होता जिसको अपना सुनकर रो रहा है। उनके गाने के 29 उनके जाने के 39 साल बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा बजने वाली आवाज सिर्फ उन्हीं की है। क्यों, आखिर क्यों है ऐसा? क्योंकि लता जी सुर थी, रफी साहब रियाज थे, पर किशोरदा सिर्फ और सिर्फ एहसास थे। उनके गानों में लाइसेंस नहीं लगता था, कॉपीराइट का डर नहीं होता था, वो गाने तो हवा की तरह होते थे, सबके हैं, सबके लिए बहते थे। आज जब हम अपना प्रोग्राम खत्म करने के कगार पर हैं, तो सोचिए ये प्रोग्राम तो जरूर खत्म हो जाएगा और अगला प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा, पर तब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रेडियो स्टेशन में, कोई मोबाइल में या किसी के दिल में किशोरदा जगमगा रहे हैं अपने गानों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनाते सुनाते पॉपी आप सबसे इजाजत लेती है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और किशोरदा को शत शत प्रणाम के साथ आप सबको नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल

ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: অভিনেত্রী হুদা দেবিকা সিহাকো অস্মিতা চাইলা পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টি ও কিদাম্বি শ্রীকান্ত। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ অংশ আরেকবার। নতুন দিল্লিতে আজ ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের অগ্রগতির মূল ভিত্তি হল সামাজিক উন্নয়ন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। নতুন দিল্লিতে বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম বৈঠক আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো যোগ্য ভোটদাতা যাতে তালিকা থেকে না বাদ পড়েন তা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর 1:30।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड खांटी सोना।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों।
2: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: তাহলে শুরু করি ইনভেস্টিং এর পথ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का

0: कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
0: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलिचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके। सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके।

0: ओके, दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनके यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में यह बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दीवान जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने कथाएं गोल्डन समय आपनी सुनछेन 100.1 FM Gold 100.1 FM Gold
4: কিছু গান কিছু কথা আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 FM Gold সুরেলা সফর সুরেলা সফর
5: বাজু।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत नींव पर टिकी है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: श्री शाह ने बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों से सहयोग सुदृढ़ करने की अपील की ताकि कोई भी अपराधी या आतंकवादी कानून से बच ना पाए। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर लागू होगा। लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेनदेन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता के दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने कहा है कि हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल गठित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कल तक ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन के दौरान बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said India's progress is rooted

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किछु गान किछु कथा आपनी सुनछेन सुरेला सफर 100.1 एफएम गोल्डे। सुरेला सफर, सुरेला सफर।
4: चलो हसीन गीत एक बनाए।
5: हाँ, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्यालों को चलो जरा सजाए। नहीं आ रहा?
5: नहीं।
4: मैं कहूँ?
5: हाँ।
4: नशे में क्यों न झूम झूम जाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
2: ठीक है सर।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक

0: सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
1: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर लागू होगा। 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। श्री गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास निर्वाचन आयुक्तों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने का रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने नेताओं ने इन घटना की निंदा की है। मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने कहा है कि हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल गठित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said that India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well. He said, power is not just the ability to move ahead, but it is also the ability to empower others. Mr. Modi said, in the present era, digital power has emerged as one of the key drivers of this transformation and playing a significant role in advancing this vision. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
4: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से

0: सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचा दी है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
3: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ताहले शुरू करी इन्वेस्टिंग एर पाथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते सुरक्षा और तकनीकी परिदृश्य से नई और जटिल चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें

0: बेहतर तैयारी, रणनीतिक दूरदर्शिता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavours to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
3: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
2: UPI merchant discount rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, MDR

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: তাহলে শুরু করি ইনভেস্টিং এর।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: शुभ शारदिया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड कोलकाता और आज है तृतीया, और तृतीया की ये जैसे जैसे शाम ढल रही है, जलते नगीनों के समुन्दर में बस घिर रही है, पूरा शहर जो है वो रोशनी में नहाया हुआ है। और ऐसे में अगर दिल आपका कहे कि दफ्तर की इस आपाधापी के बाद अब थोड़ा सा समय अपने दोस्तों के साथ यूं ही घूमते फिरते बिताया जाए, तो कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं आप अपने आप से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वो समय है साल का, ये वही समय है जब छूट है अपने दिल की सुनने की, और ये जो माहौल है इसमें खुद को बहा देने की। चाय और क्लासिक्स में चयनिका आपके साथ और रहेगी शाम 6:30 तक। और कार्यक्रम में आज रोज की तरह हम बातें करेंगे कुछ इधर उधर की, कुछ काम की, ज्यादातर सारी ही सारी काम की, कुछ मनोरंजन की, और आपको मैं सुनवाऊंगी पुराने हिंदी फिल्मी गाने। कार्यक्रम की शुरुआत एकदम सही गीत के साथ हुई, हमने सुहाग फिल्म का गीत सुना, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और आवाज थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। और अब जो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, उस गीत के बारे में कुछ कहने से पहले वो गीत हम सुनते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आप लोग सुनते रहें चाय और क्लासिक्स चयनिका के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड कोलकाता।
1: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम, बाजू

ये वो दिन है आज का जिस दिन एक परिवार ने दो बड़ी घटनाएं घटी। ये परिवार है खंडवा वाले का परिवार, गांगुलीज या गांगुलीज की हम बात करें अगर तो आज जयंती है किशोर कुमार के दादा मुनि अशोक कुमार की। और आज ही के दिन किशोर कुमार इस दुनिया से रुखसत हुए थे, आज है उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो बड़ा ही अजीब सा असमंजस वाला दिन है, लेकिन सबसे पहले तो दादा मुनि को, अशोक कुमार को याद करते हुए, उनके प्रोलिफिक करियर को सेलिब्रेट करते हुए कुछ बातें आज के इस कार्यक्रम में शामिल ना करूं अगर तो अधूरी रह जाएगी बात। पहले तो ये कि वो अभिनेता बनने नहीं वाले थे, पिता चाहते थे

कि वो बैरिस्टर बने, लॉ की प्रैक्टिस करें, पिता की तरह ही वकालत करें, लेकिन वकालत का जो पेशा है उसमें मन नहीं था, पढ़ाई में भी उस तरह से बात बनी नहीं, तो पहुँचे बॉम्बे और यहाँ पर उनकी बहन रहती थी और बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट का काम करने लगे और अचानक एक दिन उनको एक फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। बॉम्बे टॉकीज के जो मालिक थे हिमांशु राय, उनकी फिल्म जीवन नैया से एक्टर नज़मुल हसन को किसी पर्सनल रीजन की वजह से, निजी कारण की वजह से हटा दिया गया और उनकी जगह अशोक कुमार को हीरो बनाने का फैसला लिया गया और फिल्म में हीरोइन थी अशोक कुमार की देविका रानी। वैसे फिल्म के डायरेक्टर का ये मानना था कि अशोक कुमार का चेहरा जो है वो हीरो मटेरियल नहीं है, लेकिन हिमांशु राय नहीं माने और इसी तरह अशोक कुमार फिल्मों में हीरो बन गए। लेकिन हीरो बनना निजी जीवन में उन्हें भारी पड़ गया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया परिवार जो है वो खुश नहीं था इस बात से और फिल्मों में अभिनय उस दौर में वैसे भी बहुत सारे ऐसे परिवार है, बहुत ऐसे घर रहे जहां ये एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, अच्छी नज़र से इसको देखा नहीं जाता था। तो तब भी पिता चाहते थे, जब अभिनय कर रहे हैं अशोक कुमार तब भी पिता चाहते थे कि वो एक्टिंग छोड़ दें और नौकरी करें, लेकिन बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने अशोक कुमार के पिता को मना लिया और करियर की शुरुआत जो हुई अशोक कुमार की वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स के साथ हुई। वो हीरो रहे, कितनी सारी फिल्मों में स्टारडम की बुलंदियों को उन्होंने छुआ। 1943 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी फिल्म किस्मत रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक एंटी हीरो का किरदार निभाया था और एक हीरो के लिए उस वक्त उस दौर में ये कदम उठाना एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उतना एक्सपेरिमेंटल दौर नहीं था वो। और फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उस जमाने में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी और बॉम्बे और कोलकाता में 3 साल तक ये फिल्म चली थी। किस्मत की बात कर रही हूँ मैं और भारत की शुरुआती प्रभावशाली हिंदी फिल्मों में से ये एक फिल्म रही। इस फिल्म ने अशोक कुमार को अपने करिश्माई अभिनय और प्रतिभाशाली गायन के दम पर राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और इसके बाद वो एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता बने। 200 से अधिक हिंदी और कुछ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आपने नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभाई। मुख्य फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो जन्मभूमि, इज्जत, शिकारी, साजन, महल, मशाल, समाधि, अफसाना, ज्वेल थीफ और पाकीज़ा जैसी फिल्में याद आती हैं। और उसके बाद उम्र बढ़ने के बाद जो सेकंड जो एक आपका जो दौर रहा, सेकंड इनिंग्स जो आपने खेली, उसमें छोटी सी बात, खूबसूरत, शौकीन और आशीर्वाद जैसी फिल्मों में भी आपने दमदार अभिनय किया और अशोक कुमार की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। वो अक्सर ऐसे खास कैरेक्टर रोल्स में हमें दिखते रहे। हम लोग, याद है आपको, टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली वो उस वक्त की मैग्नम ओपस, एक सोप ओपरस का भी चलन है, ये टेलीविजन पे सोप्स का इतना ज़्यादा अभी प्रचलन है, लोग देखते हैं बैठ के, कितनी लंबी लंबी सीरीज़ देखते हैं, लेकिन हम लोग उस ज़माने की एक कल्ट सीरीज़ कही जा सकती है और अशोक कुमार को हमने इस सीरीज़ के सूत्रधार के रूप में देखा था। आपकी जयंती के मौके पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि और हमने सुना जो गाना हमारी इस बातचीत, मेरी इस बातचीत के पहले, किशोर कुमार मन्ना दे की आवाज़ में ये गीत था, चलते का नाम गाड़ी फिल्म से। मजरू ने इस गीत को लिखा था, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और क्योंकि आज का ये जो दिन है ये दिन थोड़ा सा विचित्र है, जैसे कि मैंने कहा अशोक कुमार के लिए भी कितना अधिक ये पीड़ादायी रहा जब किशोर कुमार गुजर गए, अपने जन्मदिन के दिन अपने छोटे भाई को, बड़े प्रिय भाई को खोना, ये बहुत ही वेदनादायक रहा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसको चलिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, उसके बाद एक और गीत आपको सुनवाऊंगी शौकीन फिल्म से जो अशोक कुमार ने खुद गाया है चिरश्री भट्टाचार्य के साथ। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गीत। आप सबके लिए हाजिर है ये गाना। फिल्म का नाम आपको मैं बताना चाहूँगी, दूर का राही फिल्म से, और ये गीत लिखा इरशाद ने और संगीतकार इस गीत के हैं किशोर कुमार। आप सब सुन रहे हैं एफएम गोल्ड कोलकाता पर चाय और क्लासिक्स, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में गीत।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चलो हसीन गीत एक बनाएं।
2: वो गीत फिर बना के गुनगुनाए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्यालों को चलो जरा सजाएं। नहीं आ रहा?
2: नहीं।
1: मैं कहूँ?
2: हाँ।
1: नशे में क्यों न झूम झूम जाएं।

100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

0: ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन की। एकीकृत बागवानी विकास मिशन फल, सब्जी, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों के चहुमुखी विकास की एक केंद्र पोषित वित्त योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के कुल बजट का 85% हिस्सा भारत सरकार देती है, जबकि शेष 15% राज्य सरकारें खुद वहन करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 100% बजट जो है वो केंद्र सरकार ही उठाती है। ये योजना किसानों को फल, सब्जी, मसाले, फूल और अन्य बागवानी फसलों की खेती के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बागवानी का समग्र विकास। देश में बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की ओर ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, क्लस्टर रोपण, संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस, एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन और बागवानी मशीनीकरण को बढ़ावा देना, इसके अलावा गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरीज और ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना करना, इसके अलावा पुराने और अनुत्पादक बगीचों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार, और साथ ही कटाई के बाद का जो प्रबंधन है और प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों के जो फसल है उसको उचित मूल्य दिलवाना। गौरतलब है कि इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है। इसे हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के तहत लागू किया गया है। MIDH ने बागवानी फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसने कृषि भूमि की उपज और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के लागू होने से भारत न केवल बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि इसने भूख, अच्छा स्वास्थ्य और देखभाल, गरीबी में कमी, लैंगिक समानता जैसे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने जाना परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में।
1: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

जारी है कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स, और दो गाने जो हमने सुने अभी अभी उनके बारे में बताना चाहूंगी आपको। एक तो हमने सुना शौकीन फिल्म का गाना अशोक कुमार और चिरश्री भट्टाचार्य की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया था राहुल देव वर्मन ने और गीत को लिखा था योगेश ने, और योगेश द्वारा ही लिखा ये वाला गीत भी था जो अभी अभी हमने सुना, छोटी सी बात फिल्म से। संगीतकार थे शोलिल चौधरी। अच्छा, आप जानते हैं प्यारे श्रोताओं कि आज विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जा रहा है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है दुनिया में? ताकि दुनिया भर में आपदाओं के प्रति लोगों को और समुदायों में जागरूकता बढ़े, लोगों को हम अवेयर कर सके और आपदा से होने वाले जोखिम और नुकसान को कम करना भी इस खास दिन का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आह्वान किया कि ऐसा एक दिन मनाया जाना चाहिए, और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए सही योजना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं 2016 से 2025 तक हर साल दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए हैं। साथ ही अब 128 देशों में मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने की सूचना है, जो 2015 में केवल 55 थी। हम सबके लिए घर जैसा तो कोई स्थान है ही नहीं, यही वो जगह है जहां हम आराम, सुरक्षा और आश्रय पाते, लेकिन घर जिसे हमारा सुरक्षित आश्रय माना जाता है, बाढ़ आने पर, भीषण गर्मी पड़ने पर या अन्य खतरों के उत्पन्न होने पर ये खतरों से भर सकता है। इसलिए इस साल इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का थीम है रेजिलियंस स्टार्ट्स एट होम, यानी हर इंसान एक सेफ और अफोर्डेबल घर में रहने का हकदार हो और आसपास के परिवेश से जुड़े खतरों से जूझने में वो सक्षम भी हो। साथ ही एक और विशेष दिन आज मनाया जाता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कार्यक्रम के दूसरे भाग में। घड़ी ये कह रही है कि बस थोड़ी देर में, 2 मिनट में 6 बज जाएंगे, और आप जानते हैं कि 6 बजे हम सुनते हैं समा

0: समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, जिसे हम दिल्ली से रिले करते हैं। लेकिन उससे पहले, समाचार की तरफ रुख करने से पहले, आप सबके लिए एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह्न 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36CR Avenue कोलकाता 7000012 में गूगल मीट के माध्यम से 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख और शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wp@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत और पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान

0: आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस की निदारा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunities for other countries as well.
3: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
2: UPI Merchant Discount Rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. India Today reiterated that Ladakh is an integral and inalienable part of India, and no amount of denial by the Chinese side can change this established fact. In response to media queries regarding recent comments made by the Chinese side on Ladakh, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the press release by Home Affairs Ministry is self-explanatory. The announcement mentions that the 28 places located in the Union Territory of Ladakh have been identified with standard place and feature names on the official map of Survey of India. This has been done in consultation with Ladakh and local stakeholders. Mr. Jaiswal said identifying these places formally on the Survey of India map of Ladakh is aimed at facilitating the accurate recognition and better awareness among the public at large. India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. Speaking on the occasion, Home Minister Amit Shah reaffirmed India's policy of zero tolerance towards terrorism. He called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing or activities against

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

ये दूसरा भाग है चाय और क्लासिक्स का, जैने का है आपके साथ ओनली ऑन एफएम गोल्ड कोलकाता। हम जब ब्रेक के उस पार मिले तो मैंने आपको बताया कि आज एक बड़ा ही खास दिन, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और उसके थीम के बारे में भी बताया कि हर इंसान को एक सेफ और अफोर्डेबल घर में रहने का हक है और ये हक उसे मिले, और आसपास के परिवेश से जुड़े खतरों से जूझने में भी वो सक्षम हो। इस साल की ये थीम है, बहुत ही उम्दा थीम, और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में भी, नेपाल में क्या कुछ हुआ, फिर से दोबारा वहाँ पे फ्लड आए, तो दिन पर दिन ये जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं और इसके लिए इंसान जिम्मेदार, नंबर वन जिम्मेदारी इंसान की है। और हम अगर थोड़ा सा और अधिक रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको इस तरह से हर जगह ना फैलाएं, थोड़ा लेस हमारी तरफ से इतना लेस नुकसान पहुंच सकता है धरती को, पृथ्वी को, उसका ज़रा ध्यान रखें, तो अभी भी शायद कुछ तो किया जा सकता है। देर हुई है लेकिन शायद उतनी देर नहीं हुई अभी। इसके अलावा आज 13 अक्टूबर को एक और दिन, बड़ा ही विशेष दिन मनाया जाता है जिसे वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे कहा जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, ताकि लोग अवेयर हो सकें किस बारे में, रक्त वाहिकाओं में जो क्लॉट्स बनते हैं, तो क्लॉट्स कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे नाम का विशेष दिन मनाया जाता है। तो इससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और स्ट्रोक जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं अगर थ्रोम्बोसिस है किसी को। और ये खास दिन थ्रोम्बोसिस के कारणों, उसकी रोकथाम और प्रबंधन के बारे में लोगों को और बेहतर जानकारी नसीब हो, इसलिए मनाया जाता है। हृदय रोग जैसे जानलेवा स्थितियों से जो इसका संबंध है, इस पर जोर डालता है, लोगों को शायद पता नहीं है इसके बारे में। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई 2014 में ISTH द्वारा, डॉक्टर रूडोल्फ विर्चोफ के जन्मदिन के सम्मान में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। ये कौन थे, डॉक्टर विर्चोफ 19th सेंचुरी के एक अग्रणी जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने सबसे पहले थ्रोम्बोसिस की ये जो क्रियाविधि है इसको पहचाना और उसको डिस्क्राइब किया। अगर आपके पैरों में भी अचानक से सूजन आ जाती है, दर्द और गर्माहट महसूस हो रही है, तो ये थ्रोम्बोसिस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। थ्रोम्बोसिस एक ऐसी व्याधि है जो अक्सर पैरों में सूजन, दर्द और भारीपन जैसी समस्याओं का कारण बनती है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं या किसी तरह की शारीरिक गतिविधि से दूर रहते हैं, उन्हें इस बीमारी का ज्यादा खतरा होता है। और आजकल जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, ये तो बहुत कॉमन सी एक बात, एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। तो क्या करना है थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए, एक तो व्यायाम करना है, सिगरेट नहीं पीनी, धूम्रपान से बचना है, हर दिन कम से कम 20 मिनट टहलना है, रक्त प्रवाह इससे बेहतर बनता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और तैराकी जैसे कम प्रभाव वाले व्यायाम भी बहुत फायदा पहुंचाते हैं। लंबे समय तक आप बैठे न रहें, और यदि ऐसा करना जरूरी भी हो तो हर घंटे उठकर टहलें या अपने पैरों को, अपने पंजों को हिलाएं डुलोएं, बहुत ही अधिक तो नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन ऑप्टिमम पानी पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और कुछ मामलों में डॉक्टर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह भी देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है इफ यू आर इन डाउट देन कट इट आउट, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसके बारे में विस्तार से जरूर जानकारी प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज है विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस जिसके बारे में हमने बातें की, और चलिए आज किशोर कुमार को भी तो हम याद कर ही रहे हैं, तो सुनते हैं उनके द्वारा गाया गया एक और खूबसूरत सा गीत, और इस गीत

को उन्होंने अकेले ही गाया है। इसके बाद एक और युगल गीत सुनेंगे आशा भोसले के साथ, लेकिन फिलहाल एक ये सोलो नंबर आप सबके लिए, और ये सितमगर का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
2: सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स चयनिका के साथ। एक विशेष सूचना, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह्न 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, योगायोग भवन P36 CR Avenue, कोलकाता 7

00001 में गूगल मीट के माध्यम से 139th डाक अदालत और पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्योरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pg.wbr@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वो दिए गए निर्धारित तारीख और समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332120250, 0332120612, 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत, पेंशन अदालत के आवेदनों और ईमेल्स पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत अवश्य लिखा होना चाहिए और ध्यान रहे कि यह डाक और पेंशन अदालत में उत्तराधिकार अधि से संबंधित विधिक मामलों और नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: और अब मेरे ही जाने का समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले आपको बताऊं कि कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का जो उल्लास है, जिस तरह की सबके दिलों में जो उत्साह है वो एकदम भरपूर है, अभी मौजूद है। तो कोलकाता की पारंपरिक और ऐतिहासिक कुलीन यानी बुनेदी घरों की जो दुर्गा पूजा है उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो एक विशेष परिक्रमा टूर उपलब्ध है एस्प्लैनेड ईस्ट से। ये जो परिक्रमा टूर है इसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रंग दे डांडिया, तारीख और समय 17 अक्टूबर शाम 6 बजे, स्थान है महाजाति सदन। और इसके अलावा कमैक स्ट्रीट स्थित एक कैफे में जापानीज किंसुगी आर्ट पर एक वर्कशॉप शुरू हुई है जो 30 अक्टूबर तक चलने वाली है। हो गई सारी की सारी जानकारी पूरी, तब चलने का समय मेरा हो गया है। तो सुनते हैं किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये वाला गाना, चलते चलते सुनते रहें।

0: Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और हेडलाइंस के साथ में है राजेश लेख।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1.5%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22700। Prime Minister Narendra Modi condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year. And UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक का उछाल, सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की बढ़त, निफ्टी 22700 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परस्पर संबद्धता के दुरुपयोग की निंदा की, भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर यूपीआई एमडीआर दीपावली के बाद लागू।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 1% से ज्यादा के लाभ में रहा, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली तेजी आई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक equity indices ended over 1.5% higher today. The Sensex surged 1,109 points to close at 73,034. The Nifty soared 359 points to settle at 22,722. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed over 1%, while the small-cap 100 index eked out a marginal gain of 0.1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों में आज बढ़त देखी गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HCL टेक में 8.3% का उछाल आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6.6% ऊपर आ गया और टेक महिंद्रा में 4.9% की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में 0.9% की गिरावट आई और मारुति तथा एटर्नल में 0.6% की सुस्ती देखी गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT surged over 5%, IT climbed 4.9%, and realty advanced 2.5%. In contrast, hospitals and healthcare dropped 0.2% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,415 companies advanced, 1,957 declined and 219 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने बाजार में उछाल देखा, तो इसको हम किन परिणामों की वजह मान सकते हैं? खासतौर पर इसे विदेशी निवेशकों का कोई एक नया टर्न माने या फिर वैश्विक परिस्थितियों पर का जो असर है वो हम पर ज्यादा दिख रहा है या कुछ अन्य कारण है इसके?
2: देखिए, इसके कई कारण हैं जो सभी कारणों ने मिलके मार्केट को एक अच्छा सर्ज दिया, एक अच्छा उछाल दिया। सबसे पहले तो जो एक वैल्यू बाइंग होती है, जो मार्केट में हमने पिछले काफ़ी दिनों में डिसेलरेशन देखी कि मार्केट ऐसे स्तर पे आ गए जहाँ पे एक वैल्यू स्टॉक्स बनते हैं जो हम आने वाले टाइम में जिनमें हम एक मुनाफा देख सकते हैं। तो उस लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर है वो आकर्षित होता है कि हम मार्केट में एंटर करें। और दूसरा, जो रोबस्ट अर्निंग्स रही आईटी सेक्टर की, आईटी कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी एक मेजर सपोर्ट मिली है। और तीसरा, कुछ ऐसे कारण है कि जो कैपिटल गेन से कुछ रिलीफ हो सकता है मिले इन्वेस्टर को, एक बहुत वो भी एक कारण है। और चौथे पे जो रुपी एक एप्रिशिएट हुआ, रुपी में एक एकदम से रीबाउंड करना 50 बेसिस पॉइंट एक बहुत बड़ी रिलीफ है रुपी के लिए, वो काफ़ी दिनों से डिसेलरेशन हम देख रहे थे। तो कुल मिला के एक सेंटीमेंट, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, तो उससे चौतरफा जो एक रिकवरी के मोड में मार्केट आई और मार्केट ने सुबह मार्केट खुलते ही काफ़ी जबरदस्त रिबाउंड दिखाया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट में एक ऐसी जो एक नेगेटिव माहौल था। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि IMF ने भी भारत की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी सुदृढ़ता जताई है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जताया है, इंक्रीज किया है ग्रोथ को। तो ये भी साथ में एक फैक्टर जो है, सपोर्टिव फैक्टर रहा है।
1: बड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक ही ट्रैक में हमें चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि बीते दिनों में यह हो रहा था कि जिस ट्रैक पर लार्ज कैप जा रहे थे उस पर शायद स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं पहुंच पा रहे थे, आज सभी एक ही ट्रैक पर चलते दिखाई दिए। तो ये घरेलू निवेशकों का इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है ज्यादा, या इस पर भी वही सारे कारण लागू होते हैं जो आपने बताए?
2: देखिए, इसके ऊपर वही कारण है जो हमने डिस्कस किए हैं कि जब चौतरफा रैली आती है तो सभी में, चाहे वो लार्ज कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स हों, सभी एक ही दिशा में फिर हमें दौड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एक तो IMF ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, भले ही एक कल के जो नंबर्स थे, कल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो फेवरेबल नहीं था और मार्केट्स में कुछ काफ़ी हलचल देखी गई, मतलब करेक्शन थी, तो लेकिन ना उतना ही आज रीबाउंड बहुत स्ट्रांग था जो ये फैक्टर, सपोर्टिव फैक्टर बने। मतलब कुल मिला के जो अगर हम देखें इसको कंपोजिट में, तो पॉजिटिव्स ज़्यादा है और नेगेटिव्स थोड़े रह गए पीछे।
0: यू मेंशन अबाउट यस्टरडेज डिक्लाइन primarily because of the global risk of sentiment. Have those pressures eased or paused for some time? What should we be expecting? Yesterday was pretty low. Today we are on a high terrain. So what should now in the coming days we should expect?
2: I don't think those pressures are subsides or eased, but today's sentiment is higher than those negative sentiments. So the today's developments are dominating those a few negative headwinds which are happening at the global level. But the rise of rupee and the robust IT earnings and IMF

0: हैं, जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है पिछले काफी महीनों से, जो एक एस्केलेशन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो ट्रांसमिट हो रही है इन्फ्लेशन में, पहले WPI में, CPI में, तो कारण इसके ग्लोबल है, कारण इसके हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल नहीं है। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखिए, आप IIP के नंबर्स देखिए, आप कोर इंफ्रा के नंबर, कुछ भी आप देखिए, तो एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव।
1: अभी जिस तरह से IMF ने आंकड़े, मतलब जो ये बात कही कि GDP हमारी 7% की बढ़ोतरी की बात की, ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा?
0: जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी लार्ज इकोनॉमी नहीं है जो 7% पे ग्रो कर रही हो। आप देखिए चाइना का ग्रोथ जो है IMF ने 4.5% बताया है, मच बिलो एज कम्पेयर्ड विद इंडिया। इंडिया 7% है और मैं समझता हूँ कि 7 से ऊपर ही रहेगा। अगर आप पिछले 5 वर्षों का डेटा देखेंगे 21-22 से लेकर 25-26 तक का, तो एवरेज ग्रोथ जो इंडिया का बनता है वो 7.5% से ऊपर है। जो उन्हीं कंट्री से, उन इकोनॉमी से, चाइना से, USA से, कहीं कहीं मतलब डबल ट्रिपल है। आप ग्लोबल ग्रोथ को देखिए 3.1%, उससे डबल रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं
1: जी।
0: तो भरोसा बनना तो लाजमी है, जो FIIs का भरोसा बनना या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी भारत की इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका तो कॉन्फिडेंस बनना स्वाभाविक है। जब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो IMF इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट 7%, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द पीपल।
2: Moving on, Prime Minister Narendra Modi today said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Modi said that India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said India's GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India's foreign exchange reserves exceed $700 billion and the banking system is in its strongest position in many decades.
3: साथियों, 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था वही आज वेपन बन रहे, सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं।
2: The Prime Minister also positioned India as a dependable ally, offering a radically different cooperative approach to global relations. Mr. Modi said that India does not grow at anyone's cost. He said that India grows with the world and for the world. Apart from that, Dr. Sharma, what the Prime Minister mentioned was also India's reforms. They continue to move India ahead at a high speed. What do you have to say about that? And second thing is about India being the home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world.
0: जी बिल्कुल लेक साहब, दिस इज़ आई बिलीव अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेंशन दैट इंडिया सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रिफॉर्म्स आर प्रोग्रेसिंग एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। सो आई वुड से देर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ विच आर सपोर्टिंग द ग्रोथ। Firstly, the stable policy environment, which we call the reforms express. Reforms are happening each day. One reforms is implemented, then the second also comes to support the first. So this chain is continue since the last many years, particularly from the pandemic years when we supported the economy with many reforms, reforms for the farmers, reforms for the MSMEs, reforms for the NBFCs, reforms for the citizens, laborers. So So these reforms are progressing and providing a great support to the economy. So this is the first pillar. And second is the trajectory of the middle class. Middle class is growing significantly as 25 crore people are pulled from poverty to the middle class, lower middle class, or more lower middle class is now entering.
2: So the consumption story is quite strong.
0: Yes, consumption story is becoming more and more robust and strong to support this growth trajectory.

0: is happening, 7.8% or more than 7% during the last many years. And third is the export competitiveness. We are becoming more and more strong at the global level. Our competitiveness is increasing. We are making new numbers in our exports every year. Last year, we posted $863 billion. So now, current year, we have a target of $1 trillion. So this is again a strong pillar of the economic growth trajectory. And fourth is the ease of doing business, which is happening for the businesses to expand their production possibility frontiers. Reforms are happening, compliances are becoming simple, GST is now becoming simple. So these four pillars are becoming a strong support for the overall economic growth trajectory of the country.
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ी हुई घरेलू मांग और बेहतर सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक बढ़ोतरी को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण इन अनुमानों में सुधार किया गया है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया गया था। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा तथा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। एसपी, कई सारी बातें इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ी है, एक आम व्यक्ति के नजरिए से अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो आईएमएफ को ऐसा क्या नजर आया भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी वजह से आईएमएफ ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत की घरेलू उत्पादन वृद्धि दर इतनी होगी?
0: देखिए, आईएमएफ के जो ऑब्जर्वेशंस है, खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले चार पिलर्स बताए हैं, तो कंजम्पशन एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए, और सेकंड जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स ने एक बहुत ही बड़ी हैंड होल्डिंग हमारी ग्रोथ को,
1: कारोबार करने में आसानी होना,
0: तभी तो हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे एमएसएमईज ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो हमारे सेक्टोरल डेवलपमेंट्स है, लाइक द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या फिर और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है, लगभग कोई 10% के आसपास का अभी हमने जो फर्स्ट क्वार्टर में देखा तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 9% के भी ऊपर है, और पिछले साल भी 9.9% था। तो कुल मिला के जो ये फैक्टर्स हैं, ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और खास करके जो चैलेंजेस जो एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए चैलेंज, उनके लिए फिस्कल चैलेंज एक बहुत बड़ी एक समस्या है, और एक आने वाले टाइम में उनको एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है, इन्फ्लेशन उनके कई, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज स्टिकी एट द हायर लेवल, लेकिन ग्रोथ इज डिसेलिरेट हो रही है और डेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी, और चाइना में ग्रोथ जो है 4.5% पे आ गई है। तो कुल मिला के जो भारत की लीडरशिप है, जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो असल में ही सराहनीय है कि हम इतने हेडविंड्स के बावजूद भी हम इस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। MDR के संबंध में अगली सूचना समय आने पर अलग से दी जाएगी। और इस बीच सभी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ निशुल्क यूपीआई लेनदेन करते रहेंगे। MDR शुल्क अगले आदेश के बाद केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक और व्यापारी के बीच किसी भी लेनदेन पर लागू होगा। आंकड़ों के अनुसार लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई QR कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भी पहले की तरह लेनदेन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। एसपी, इस तरह की खबर आना हमारे पास कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट में यह दीपावली के बाद लागू किया जाएगा, हालांकि पहले से ही क्लियर है कि जो व्यक्ति से व्यापारी के बीच में होना 2000 रुपए से अधिक का लेन देन उस पर ही होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो डिमांड है काफ़ी हाई रहती है, तो इसमें क्योंकि एक नई प्रणाली सामने आ रही है, तो ये डिसीजन अच्छा है कि जो कोई नई चीज़ है उसको हम एक नॉर्मल जब सिनेरियो होगा उसमें इम्प्लीमेंट करें, तो उसको समझने में लोगों को आसानी रहेगी। अब क्योंकि जो फेस्टिव डिमांड में सबसे ज़्यादा यही 1-4 महीने होते हैं जहाँ पे जो शुरू होती है

0: is a some talk, positive talk between US and Iran, and prices are decelerating significantly, falling drastically at the normal levels, then we can say that yes, crude prices are now benefiting the growth or the economy.
1: So which domestic themes, Dr. Sharma, do you think will define the next phase of Indian market? Manufacturing, capex, financialization, digital economy, or consumption?
0: I think, as I mentioned, consumption is a strong support for the economy. That is at the forefront of the overall growth trajectory. If the consumption is not there, then the economy can't grow in a significant way. So this is the major factor. And second, to speed the economic trajectory, the digitalization is very important. That is, again, India is a leader in the digital economy at the global level. And thirdly, the earnings of the businesses are also
2: डॉक्टर शर्मा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी. शुक्रिया.
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स गेन ओवर 1.5%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1,100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,700. प्राइम मिनिस्टर कंडेम्स वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, पोजिशंस इंडिया एज अ डिपेंडेबल एलाय. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year, and UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है. नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है.
5: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा. क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे.
4: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है. उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं. भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है. श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया. भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है. विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हविलचेक से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
2: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: Meanwhile, speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government is open to hearing suggestions on the removal of long-term capital gains tax during consultations for the upcoming union budget. She added that the government will continue to follow a disciplined fiscal approach while protecting spending on key areas such as welfare, education and healthcare. UPI merchant discount rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs Dr. L. Murugan has resigned from both his ministry and membership of Rajya Sabha. In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Dr. Murugan said he wishes to return to the grassroots, stand with the party workers and dedicate full time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. India Today reiterated that Ladakh is an integral and inalienable part of India, and no amount of denial by the Chinese side can change this established fact. In response to media queries regarding recent comments made by the Chinese side on Ladakh, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The press release by Home Affairs Ministry is self-explanatory. The announcement mentions that the 28 places located in the Union Territory of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा कि भारत और विदेशों के निवेशक पूंजीगत लाभ पर कर और प्रतिभूति लेन देन कर सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर लगने वाले करों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च को सुरक्षित रखते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हॉवलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत

चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रिपीट कृपया इसको दोबारा सुन लें, भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर ना दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार

0: भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
1: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
2: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
3: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
1: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में

राजनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार बेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैरागुए में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के

0: सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक गणराज्य रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ संयुक्त विनिर्माण और औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थ की लत की चपेट में आ जाता है वहाँ पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास उच्च न्यायालय में दो न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई। धर्मलिंगम लिंगवेश्वरन और बालाथुंडयथुम कार्तिकेयन को मद्रास उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में तेज बारिश के बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a two-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. The first BIMSTEC Home Ministers meeting concluded in New Delhi with adoption of

हेलो हेलो माँ, हेलो बापी, फोन तो लो। हेलो हेलो, केयर टेकर फोन तो लो, जाओ चाबी नहीं गई, दरजा खोलो। माँ कोथाय? बाबा केन चुप? फोन तुले आमाके बोलो। हेलो हेलो हेलो।